सुप्रभात, हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की तिथि 30, तदनुसार 21 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:49 होने ही वाले हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी ये प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: मनुष्यक सब दुर्गुणक समुच्चय जो कोनो एक व्यक्ति में देखबाक हो, कृतघ्न ओ व्यक्ति अछि।

0: जे उपकार के बिसर जाए। सन अधम क्यों नहीं अछि, पशु आ पक्षी पर्यंत उपकार के मन रखे छे। एंड्रोकल्स नामक क्यों दास स्वामी के गृह से भागी पर आयल, बाट में एकटा सिंह भेटले, सिंहक नौह में पैघ कांट पैस गेल छलिक, रक्तस्राव होय छलिक, सिंह अत्यंत कष्ट में छल। एंड्रोकल्स कांट बाहर के पट्टी बांध दिल के ओकरा शुश्रूषा सँ सिंह स्वस्थ भेल। ओहि सिंह संगे एंड्रोकल्स कतेको मास व्यतीत कलक, संयोगात ओ पकड़ा गेल, स्वामी के सम्मुख आनल गेल, ओकरा प्राण दंड भेटले। तत्कालीन प्रथानुसार हिंसक पशु सँ ओकर बध कराओल जाए।
1: एकल रहने महत्व घटी जाए, समूह व समष्टिय में व्यक्ति व व्यष्टिक महत्व होइ छ। एकटा उदाहरण लेल जाए, ऊंच आ पातर नाकक बड़ प्रशंसा होइ छ, किंतु यदि मुखमंडल पर केवल नाकेटा हो, आँख भौं ललाट चिबुक आदि आन आन अंग नहीं हो, तो वो नाक केहन लगते। जे बात नाकक संबंध में अछि, वह बात आनो आनो अंगक संबंध में अछि। सब अंगक सान्निध्य में अंग विशेषक सौंदर्य आकृष्ट करे छे। प्राचीन काल में राजा लोकन मुकुट धारण करे छला, मुकुट बड़ मूल्यवान होय छल, मूल्यवान धातु से निर्मित आ बहुमूल्य रत्न आदि से खचित होय छल। राजा कतेक पैघ अछि, एकर एकटा मापदंड ओकर मुकुट सेहो होय छलै। जहन मूल्यवान मुकुट तहन ऐश्वर्यशाली राजा। एखनो कैकटा संग्रहालय में प्राचीन कालक मुकुट प्रदर्शनार्थ राखल अछि। हाँ तो कहक ई अछि जे मुकुट दर्शनीय होय छल अवश्य, किंतु ओकरो शोभा तखने होय छल जखन ओकरा धारण के निहार राजा वा धारण के निहार रानी आन आन सौंदर्य प्रसाधन सँ युक्त हो। मानव समुदाय में सेहो ई तथ्य ओतबे सत्य अछि। एकरा मनुष्यक स्वभावगत दोषो कहल जतेक जे मनुष्य एकसरे महत्व लेबय चाहे छै, स्वयं के अन्य सबसँ विशिष्ट बुझब एहि ग्रंथि सँ ओ ग्रस्त होइ छै। संसार में एक सँ बढ़कर एक पुरुषार्थ के निहार नरपुंगव भेलाह अछि। को बड़ छोट कहत अपराधु, यह स्थिति भ जाय छै हुनका लोकनि गुणगान करबा में। विद्वाने देखू तो एक सँ एक, बलवाने देखू तो एक सँ एक, धनवाने देखू, पराक्रमीय देखू तो एक सँ एक, मुदा क्यों एहन नहीं भेटता जे एकसरे शीर्ष पर पहुंचल होती। क्यों बड़ धनाढ्य छथि तो हुनका धनाढ्य बनेबा में हुनक अपन प्रयास सहित आन आन अगणित कारण योगदान दिलकन अछि। तहिना पराक्रमिक पराक्रम अनेकानेक घटकक परिणाम होइ छै। केओ बड़ विद्वान छथि तऽ हुनक विद्वत्ताक पाछा कारण अछि गुरुजनक प्रयास, समाज, अभिभावक, शासक सभक योगदान। तैं ककरो ई दम्भ नहि करक चाही जे हुनक अपलुब्ध मात्र हुनके ही प्रयासक परिणाम थिकनि। कखनो ई अहंकार नहि करक चाही जे जे छी से हम ही छी, आसपासक आन सब क्यों हमरा सँ न्यून अछि। ऋषि अंगिराक शिष्य रहथि उदयन, बड़ प्रतिभावान रहथि। अपन प्रतिभाक प्रदर्शनक लेल ओ सतत अवसरक ताक में रहल करथि, संगे सहपाठी सबके ओ बड़ हे दृष्टिये देखथि। ऋषि अपना शिष्यक एहि स्वभावगत दोष सँ परिचित रहथि। हुनका सतत चिंता लागल रहनि जे कोना उदयन ए दोष सँ मुक्त हेताह। जाड़क साँझ रहिक गुरु शिष्य सब मिली आगि तापि रहल छलाह। एकटा चिनगोरा बेस नमहर रहिक, गुरु कहलखिन घूर में सँ ओ बड़का चिनगोरा बाहर कऽ कऽ हमरा आगा में राखि दै, हम एकसरे एकरा तापक आनंद लेब। चिनगोरा हुनका आगा में राखि देल गेलनि, किंतु तुरंते चिनगोरा छाउर सँ आवृत भऽ गेल, ओकर तेज ताप मलिन होमय लगले आ कने काल में चिनगोरा मिझा गेल।
2: श्रोता सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। सुबह के 5:55 हुए हैं, समय हो चला है किसान भाइयों के लिए कुछ जरूरी बातों का। जी हाँ, कृषि चर्चा।

0: आजुक किसी चर्चा शंकर कुमार चौधरी से सुनल जाए। स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन, हम सब खेती करैत छी तो सदत फसलक उपजा मनोनुकूल चाहैत छी, जाहि लेल माटिक स्वास्थ्य ओ एकर उर्वरा शक्ति पर ध्यान देव पड़त। माटिक जखन स्वास्थ्य के गप करैत छी तऽ एहि पर ध्यान देबाक चाही जे फसिल बेर पर ओ व्यावसायिक दृष्टिसँ जो नीक होयत ताहि लेल माटिके स्वस्थ राखऽ पड़त। एहि लेल आवश्यक ई भऽ जाइत अछि जे कोनो फसिलके लगयबासँ पहिने खेतक माटिक जाँच करा लेबाक चाही। कारण माटिक जाँच करौलासँ हमरा सबके ई बुझबामे आबि जाइत अछि जे खेतक माटिमे कोन कोन पोषक तत्वक कमी अछि अथवा कोन कोन पोषक तत्वक अधिकता अछि। माटिक सूक्ष्म पोषक तत्वक केहन स्थित अछि, माटिक पीएच मान कतेक अछि, माटि केहन प्रकारक अछि इत्यादि। स्नेही किसान श्रोता लोकनि, माटिक जाँचक महत्व के बुझैत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाओल गेल अछि, जकर मुख्य उद्देश्य माटिक स्वास्थ्यक परीक्षण करब अछि। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के हमरा लोकनि लाभ उठाबी। एहि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के ई ध्यान रखबाक अछि जे एकरा लेल लाभ उठेबाक लेल किछु शर्त निर्धारित कयल गेल अछि जकरा मानबाक चाही। जेना सबसे पहिने किसान भाई बहन लोकनि जे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ उठाबऽ चाहैत छथि, हुनका लोकनि के पंजीयन कराबऽ पड़ैत छनि आ तकर बाद एक गोट कार्ड उपलब्ध कराओल जाइत अछि, जाहि पर माटिक प्रकार, उर्वरकक अनुशंसा इत्यादि सूचना अंकित रहैत अछि। पंजीयन ऑनलाइन सेहो कराओल जा सकैत अछि। पंजीयन लेल राजस्व गामक निवासी होयबाक चाही, तखने ई सुविधा उपलब्ध भऽ सकतनि। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सँ लाभ उठेबाक लेल माटिक नमूना देल गेल दिशा निर्देशक अनुसारे एकत्र कऽ कऽ जिला स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में पठेबाक चाही। एतौ पठाओल गेल माटिक जाँच निःशुल्क कयल जाइत अछि। मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करौलाक बाद ई ध्यान राखल जाइत अछि जे ओहिमे सभ ब्यौरा अंकित कऽ देल जाइत अछि। किसान भाई बहिन लोकनि, जाँचक लेल माटिक नमूना सावधानीपूर्वक एकत्र करबाक चाही। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना माध्यमसँ जोत धारक के माटि के सुधारबाक विधि सेहो बताओल जाइत छनि, जाहि अंतर्गत जैविक खेती के प्रोत्साहन देबाक अनुशंसा कयल जाइत अछि। संग संग माटि मे कतेक खाद ओ उर्वरकक व्यवहार कयल जाय तकर अनुशंसा कयल जाइत अछि। राइजोबियम, पीएसबी आदि के व्यवहार कतेक मात्रा में कोना कयल जाय तकर अनुशंसा कयल जाइत अछि। जैव कीटनाशी इकाई के ज्ञान देल जाइत अछि। फसल ओ तरकारीक जे जैविक कचरा बनाओल जाइत अछि, जकरा कंपोस्ट कहैत छी, ताहि के प्रशिक्षण देल जाइत अछि आ ऑनलाइन डाटा प्रबंधनक सेहो व्यवस्था कयल जाइत अछि। एतबे नहि, जैविक खेती के प्रदर्शन कऽ कऽ देखाओल जाइत अछि। एकर संगे उसर भूमिक सुधार इत्यादि महत्व के बुझाओल जाइत अछि। आवश्यकता ई अछि जे हमसब मृदा स्वास्थ्य कार्ड सँ लाभ उठाबी, ओ राष्ट्र के समृद्ध बनाबी जे बेरक मांग अछि। एहिक संग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न भेल, चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।
1: किसान श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज विषय था मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता। जानकारी दे रहे थे शंकर कुमार चौधरी। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। सुबह के 6 होने ही वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से

0: जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा।
3: स्वास्थ्य चर्चा में आज की चर्चा का विषय है नेत्र रोग और आधुनिक चिकित्सा पद्धति।

0: विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष शेखर। डॉक्टर आशीष शेखर, आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: नेत्र रोग के क्षेत्र में ये जो चिकित्सा की जो नई नई तकनीक आ रही है वो कैसी तकनीकें हैं ये बताइए।
1: जो मॉडर्न डेवलपमेंट हम लोगों के विभाग में हो रहा है, तीन डिवीजन में उसको बांट सकते हैं। एक तो डायरेक्टली कैटरैक्ट रिलेटेड है, क्योंकि जैसे जैसे लाइफस्टाइल इंप्रूव कर रहा है, पहले जैसे था कि 50 साल 55 साल का आदमी हो गया, रिटायर कर गया, घर बैठ गया, अब एक 60 साल का आदमी भी एक्टिव जिंदगी लीड कर रहा है, तो उसको भी एक अच्छी रोशनी की रिक्वायरमेंट है। तो कैटरैक्ट मोतियाबिंद एज रिलेटेड है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा आदमी को कैटरैक्ट होगा। कैटरैक्ट होगा तो पहले जब हम लोग कहते थे कि मोतियाबिंद पकने दीजिए, जब अंधे हो जाइएगा तब आइएगा, अब हम लोग ये नहीं कहते,
0: मैच्योर हो जाए तब।
1: जी, अब हम कहते हैं कि आपको आपके दिनचर्या में दिक्कत हो रही है और आपकी रोशनी अगर 95% भी है तो हम आपका समाधान करने को तैयार हैं। इतना अच्छा लेंसेज आ गया है और इतना अच्छा मशीन आ गया है कि बिना सुई और बिना पट्टी के ऑपरेशन हो जाता है, और ऑपरेशन के बाद जो नज़दीक के लिए चश्मा लगता था पहले, अब उसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है।
0: क्या है ये तकनीक?
1: इसको हम लोग फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं
0: जी,
1: और ये एक बहुत सूक्ष्म छेद से ऑपरेशन होता है जिसमें हम प्राकृतिक लेंस निकाल देते हैं और एक आर्टिफिशियल लेंस, या तो मोनोफोकल या मल्टीफोकल, आँख में लगा देते हैं। मल्टीफोकल लेंस लगाने के बाद चश्मे की ज़रूरत नहीं होती है। और जो दूसरा डेवलपमेंट है वो पर्दे की बीमारियों में है। पहले डायबिटीज़ अक्सर 40-50 साल की उम्र के बाद होती थी, मगर आजकल हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि 20 साल 25 साल के लोग बहुत तादाद में डायबिटिक हो रहे हैं, और ये जितने यंग एज में डायबिटिक होते हैं उतने जल्दी उनके नस में कमजोरियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चीनी के वजह से जो पहले पेशेंट अंधा हो जाता था वो अब हम रोक लेते हैं, या ब्लड प्रेशर के वजह से नस जो फट जाता था आंख के अंदर, खून की नली फट जाती थी, जिसका हमारे पास बहुत कारगर उपाय पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि हमारे पास आधुनिकतम मशीन आ गई है जिससे हम जांच लेते हैं।
0: कौन सी मशीन है?
1: इसको हम लोग OCT बोलते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी एंजियोग्राफी मशीन। जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी होता है वैसे ही आंख के पर्दे का एंजियोग्राफी करते हैं। इससे हम लोग एंजियोग्राफी मशीन से हमें ये मालूम चलता है कि जो खून की नली है उसमें रिसाव हो रहा है या ब्लॉकेज है कि नहीं, और OCT ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी से हम पर्दा के डिफरेंट लेयर्स में सूजन है कि नहीं इसकी जानकारी ले लेते हैं, और डिपेंडिंग ऑन सूजन है कि रिसाव है आँख के अंदर सुई देते हैं या फिर लेजर प्रक्रिया से उस लीकेज को बंद करते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन से हम अपने पेशेंट को फिर से अच्छी रोशनी दे सकते हैं, जो साधन हमारे पास पहले नहीं था।
0: पहले जांच ही नहीं हो पाती थी,
1: जांच ही नहीं हो पाती थी, हम जान ही नहीं पाते थे और हम कर ही नहीं पाते थे। जिन चीजों पर बताया जाता था जितने रोशनी कम होने के बाद इंटरवेंशन था, अब आजकल हम लोग नॉर्मल रोशनी में आंख में सुई डाल रहे हैं क्योंकि हमें सूजन दिख रहा है, एंड आई नो कि अगर हम उसको छोड़ देंगे तो 3 महीने बाद मेरे पेशेंट की रोशनी कम हो जाएगी।
0: एक भयावह स्थिति जो बन जाती है वो है ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद।
1: ग्लूकोमा बिल्कुल भयावह स्थिति नहीं है।
0: अच्छा,
1: ग्लूकोमा भयावह स्थिति डॉक्टर के डायग्नोसिस मिस करने से और पेशेंट के को बीमारी की
0: जानकारी नहीं होने,
1: बीमारी के सिवियरिटी को और उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझने के वजह से, जो तालमेल डॉक्टर और पेशेंट में नहीं होता है, इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। ग्लूकोमा का अगर एक बार डायग्नोसिस हो गया और आप उसका इलाज ठीक से कराते हैं, समय समय पर जाके दवाई चेकअप कराते हैं, प्रेशर चेकअप कराते हैं और अपना जाँच करा लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी कट जाएगी, आपको रोशनी में कमी नहीं होगी। होता क्या है, लोग समझते हैं कि डॉक्टर ने दवा लिख दी, मैं दवाई डाल रहा हूँ, मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया, जिंदगी कट जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगा।
0: कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद हो, मधुमेह हो, उच्च रक्तचाप हो या ग्लूकोमा हो,
1: जी,
0: इन सारी स्थितियों में अगर जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसका हम लोग सही ढंग से इस्तेमाल करें, सही वक्त पर इस्तेमाल करें,
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत
1: बिल्कुल
0: फायदा हो सकता है। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में विषय था नेत्र रोग और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां। विशेषज्ञ थे डॉक्टर आशीष शेखर। डॉक्टर आशीष शेखर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, आज विषय था नेत्र रोग और आधुनिक चिकित्सा पद्धति। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आशीष शेखर। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय सुबह के 6:10 हुए हैं, समय हो चला है भक्ति संगीत के हमारे इस कार्यक्रम वंदना का। आइए इस कार्यक्रम का आरंभ समूह स्वर में गाए इस देश वंदना से।

समूह स्वर में आप सुन रहे थे ये देश वंदना। भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदना। राम सच में ये केवल शब्द नहीं, वो औषधि है जिसके सुनने या उच्चारण करने मात्र से ही हमारे मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। कहते हैं विकारों से मुक्त मन ही ईश्वर के करीब होता है, और जो व्यक्ति ईश्वर के करीब होता है उसे हर

व्यक्ति हर जेब में अपने उसी आराध्य प्रभु का दर्शन होता है। ये दृष्टि जिसे मिल जाए समझे उसने ईश्वर को पा लिया। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो ईश्वर भगवान से अलग है। सब में वो है, वही सबका पालन करते हैं, वही सबका पोषण और संहार भी। सच्चे दिल से की गई इनकी आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। आइए ना इस पावन राम नाम का गुणगान करें।

कहते हैं कि इस अस्थाई जिंदगी में हम सब कुछ अस्थाई करने के लिए दिन रात भागते रहते हैं, अच्छा बुरा का फर्क किए बगैर, बस अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे का नुकसान तक करते रहते हैं। लेकिन एक पल के लिए हम भूल जाते हैं, इस दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं रहता, एक भगवान के नाम, प्रेम, करुणा और मानवता के सिवा। प्रेम का ही तो दूसरा नाम ईश्वर है। जब आप किसी भूखे को अन्न का दान देते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो ये 100 तीर्थों के पुण्य के बराबर होता है। मनुष्य में, जीव जंतुओं में भी अपने आराध्य को देखना, यही तो ईश्वर की वो कृपा है जो सबको प्राप्त नहीं होती। ये केवल सच्ची भक्ति, श्रद्धा और समर्पण रखने वाले भक्तों को ही मिलती है। बिरले होते हैं ऐसे भक्त।

सच में ये समय जो है ना, ये अपनी निश्चित चाल से यूं ही चलता रहेगा। दिन महीने साल के रूप में ये यूं ही बदलता रहेगा। कहते हैं अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है प्रेम, भक्ति और मानवीय संवेदना। जब तक हम में सबके प्रति प्रेम का भाव है, किसी के दुख को देखकर जब हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि हम भक्ति के सही मार्ग पर चल रहे हैं। आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम आप अपने स्मार्टफोन पर भी सुन सकते हैं। इसी वक्त डाउनलोड कीजिए हमारे ये ऐप न्यूज ऑन AIR। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुरेश वाडकर के स्वर में रामचरित मानस गान।

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान विवेक

मान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान, विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण मांगा।

अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर के स्वर में रामचरित मानस गान, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। श्रोताओं, जानकारी प्राप्त कीजिए, आज हमारे इस केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। आज की हमारी सभा में अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

सुबह 10 बजे, सुबह 9:50 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारे कार्यक्रम। महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम होगा नारी संसार, अपने निर्धारित समय दोपहर 12:30 से। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। आज दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे अपनी ही चिट्ठियों पर आधारित पसंदीदा फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज की हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे युवा श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम होगा तरुण कुसुम। शाम 5:40 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे नई फिल्मों से लिए गीत। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे आज हफ्तावार जायजा और शाम 6:15 पर महाकवि की रचनाएं आप सुनेंगे विद्यापति गीत। ग्रामीण भाइयों का अपना कार्यक्रम होगा गांव घर अपने निर्धारित समय शाम 6:30 पर। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे नन्ना मुन्ना राही। खेती गृहस्थी किसान भाइयों के लिए हमारा ये कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे से। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात 8:15 ये समय होगा हमारे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार का। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे कार्यक्रम साहित्य के। सूत्रधार होंगे अमलनाथ ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद। अपनी ही पसंद के पुराने फिल्मी गीतों का जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आज आप सुनेंगे रात 10 बजे से 11 बजे के बीच। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। सूचना शिक्षा और मनोरंजन एक साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया, जिससे नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक

0: ने भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। एनटीए ने कहा कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थाई उत्तर में मौजूदा गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने कैमरून के ध्वज वाले एक कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया। लुटुफ नामक जहाज को सोमवार को कब्जे में ले लिया गया और नुगाल तट की ओर ले जाया गया। इस जहाज पर मोगादिशु में एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए तुर्की के हथियार, संचार और सैटेलाइट उपकरण लदे हुए थे। चालक दल में 6 भारतीय सदस्य सवार थे। हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा ये कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार करै छी। हमरा संगे भाई अपने के नमस्कार करै छी सुधाकर जी, और स्वागत है अहाँ के एहि कार्यक्रम में।
1: सबसे पहले तो इस कार्यक्रम को सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथ ही प्रवीण जी, आपको भी हमारा नमस्कार। कैसे हैं आप?
0: जी बहुत नीक छी। और जना कि हम सब कार्यक्रम के सब दिन से शुभारम्भ करै छी कार्यक्रम के एकटा सुंदर संग विचार से। आजुक विचार हम महात्मा गांधी से लेलहुँ अछि। शिक्षा से मेरा मतलब है मनुष्य के नैतिक मूल्यों से। गांधी जी के शिक्षा पर देल गेल विचार यथार्थ अछि। जतेक एहि पर हमसब मंथन करब ओतेक हमरा भेटत। यानि शिक्षा किया आवश्यक और शिक्षा लेला के बाद हमर दायित्व बोध कतेक तक हेबाक चाही, हमर जे एकटा दर्शन अछि से आत्मसात अहाँ कते तक करै छी। यानि नैतिक मूल्य के बिना शिक्षा से जे शिक्षित छथि से अधूरा रहै छथि। यानि शिक्षित गण जतेक छथि मनुष्य, ओ निश्चित रूप सँ यदि शिक्षा के महत्व के बुझै छथिन तऽ हुनका सबसँ पहिले अपन नैतिक जिम्मेदारी अपना आप पर लेबाक चाही।
1: बड़ी प्यारी बात कही आपने आज कार्यक्रम की शुरुआत में ही प्रवीण जी। देखिए, इस बात को मैं अगर कहूँ तो आसान शब्दों में अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि ये शिक्षा के साथ अगर आप में नैतिक गुण का विकास नहीं होता है तो आप बिल्कुल उस पेड़ की तरह हैं जो पेड़ तो है लेकिन उसमें फल या फूल नहीं। नैतिकता वो फल और फूल है जो हमें तो खुद सुगंधित करते ही हैं, साथ ही साथ हमारे करीब आने वाले, हमारे पास आने वाले लोगों को भी वो अपनी खुशबू से खुश कर देते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: तो स्वाभाविक है कि सिर्फ शिक्षित हो जाना और व्यवहारहीन होना और बिल्कुल रूखे स्वभाव का होना ये कहीं से भी उचित नहीं है। शिक्षा का अर्थ ही है कि शिक्षा जो विनय प्रदान करे, जो आपको लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना को बढ़ाने की प्रेरणा दे, लोगों को गले लगाने की सीख दे, यही तो शिक्षा है।
0: बहुत सुंदर, अपने बहुत अति उत्तम अखन विचार रखल हुए हैं। और संग संग निश्चित रूप से देखियो जे वृक्ष में फल लगै छे तो ओ नम्र भऽ कऽ नीचा धरती के तरफ झुकै है और पकला के बाद खसियो पड़ै है। तऽ की सीखै छी हमसब? शिक्षित भेला की हेबाक चाही हमर नैतिक दायित्व कर्तव्य बोध। और संग संग यदि हम अपन अधिकार बुझै छी, एहि देश में हमर अधिकार अछि, हमरा संविधान देने अछि, तऽ संविधान अहाँके कर्तव्यों के लेल कहने अछि, तऽ पहले कर्तव्य तखनो अधिकार। यानि गीतो जे कहै छथिन, कृष्ण कहै छथिन गीता में, हे मनुष्य अहाँ कर्म के अधिकारी छी, फल के नहि। फल तऽ अयबे करत लेकिन पहले अहाँ कर्म करू। यानि शिक्षित भेला के मेन उद्देश्य यह छै जे अहाँ के नैतिकता जीवित हेबाक चाही अहाँ के हृदय में, और ई सब जन्म में अहाँ प्रचार प्रसार करी।
1: प्रवीण जी, हमारे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में हम श्रोताओं के लिए हर वो चीज़ लेकर आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, हमारी ज़िंदगी को बेहतर करता है। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन सब कुछ लेकर आते हैं, तो बारी बारी से उन चीज़ों को श्रोताओं तक पहुंचाना भी हमारा धर्म है
0: जी।
1: तो अब समय हो चला है कि आज 21 अगस्त के दिन के इतिहास को श्रोताओं तक पहुँचाने का। तो आज के इतिहास की जो मुख्य जो घटनाएँ हैं वो श्रोताओं को बताना चाहूँगा। आज ही के दिन यानी सन 1972 में 21 अगस्त को ही भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, और आज ही के दिन यानी 21 अगस्त को सन 1911 में पेरिस में लूवर संग्रहालय से प्रसिद्ध लियोनार्डो द विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की चोरी हुई थी। आज ही के दिन सन 1959 में हवाई आधारित तौर पर अमेरिका का 50वां राज्य बना था। आज ही के दिन 21 अगस्त 1991 को लातविया को सोवियत संघ से पूरी तरह स्वतंत्रता मिली थी। और बात करें आज के इतिहास की तो आज ही के दिन सन 2023 में अंतरिक्ष मिशन के तहत चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच सफल संचार स्थापित हुआ था। बात करें आज के दिन प्रमुख इतिहास में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के, तो आज ही के दिन 21 अगस्त सन 1927 को वी सत्यनारायण रेड्डी, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और पूर्व राज्यपाल थे, उनका जन्म हुआ था।

बहुत बढ़िया। एखन अहाँ इतिहासके किछु जानकारी देलहुँ, यानि 21 अगस्तके इतिहासमे की सब अछि पाछू ओ अहाँ दृष्टान्त देलहुँ। आओर सङ्गे सङ्गे हम ई कहऽ चाहब जे इतिहास तऽ हर पल हर क्षण बनैत अछि, हर दिनके बनैत अछि, लेकिन हमसब किछुए अंश परोसै छी, बाकी इतिहास अहाँसब देख सकै छी। हर दिन हर पल एकटा इतिहास बनै छै, तऽ आओर हमहूँसब एकटा इतिहास बनाबी अपन कर्म क्षेत्रमे आगाँ बढ़िकऽ। आओर एखन सुमधुर एकटा मैथिली गीतके आनन्द ली।

नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं।

0: तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: रही जोरे बटोही। श्रोता सुन रहे थे मैथिली सुगम संगीत, कलाकार थे अरविंद कुमार झा और प्रवीण जी। हम चाहेंगे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके पास मौसम संबंधी अगर सूचना है।
6: जी, मौसम संबंधी सूचना अच्छी, लेकिन पहले हालचाल के जानकारी श्रोता के दो दी। नमस्कार, हालचाल संग हम प्रवीण कुमार। बिहार PM आवास योजना 31 मार्च 2027 तक बनत लगभग 11.18 लाख पक्का के घर। एखन तक कुल आवेदक जे 19 लाख परिवार केने छथि जे वंचित छथि, जाहिमे सँ 11,18,000 पक्का के घर मार्च 27 तक पूरा भ जायत। शेष बचल ओहि के बाद होयत। बिहार में ध्वनि यानी तेज आवाज प्रदूषण पर हाई कोर्ट संज्ञान लेने अछि। DJ और प्रेशर हॉर्न पर उचित कानून के गाइडलाइन देने अछि। निर्देश गाइडलाइन एहि प्रकार अछि, राइट 9:55 सँ यानी 10:05 पहले सँ DJ लाउडस्पीकर पर पूर्णतः रोक लागल। प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर कानूनी कार्रवाई भ सकैत अछि। स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय के 100 मीटर के अंदर साइलेंस यानी जीरो शून्य आवाज हेबाक चाही। संबंधित स्थान पर ने हॉर्न ने ध्वनि प्रसार यंत्र के उपयोग हेबाक चाही। भेला पर कानून सम्मत कार्रवाई भ सकैत अछि। DJ ऑपरेटर सब, विवाह भवन के संचालक सब के पंजीकरण करनाय अनिवार्य भ गेल अछि। सार्वजनिक स्थान पर लगायल जाय डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, ई नव गाइडलाइन के पालन हेबाक चाही। एहि मे कोनो तरह कोताही नहि हेबाक चाही। आम जनता के एहि मे सहयोग करबाक चाही आ प्रशासन के कानून के गाइडलाइन के पालन पूर्णतः करबाक चाही। ई गाइडलाइन देने अछि। ई हालचाल एखन आकाशवाणी दरभंगा से सुनि रहल छी।
0: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूँ कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: दरभंगा में एक राष्ट्रीय स्तर के महिला के बैठकी भेल, जेहि में बच्चा बच्ची के शिक्षा, संस्कार और भविष्य पर समय रहे ध्यान देवाक बात आयल। एहि लेल नव पीढ़ी सृजन करैत अछि, जेहि में महिला बच्चा बच्ची के शिक्षा और संस्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छथि। सौ समय ध्यान देखला देला पर बच्चा बच्ची में संस्कार और शिक्षा पसरैत अछि, जाहि में पिता के सेहो सहयोग करबाक चाही। संग संग परिवार में जे और गार्जियन छथि हुनको दायित्व बढ़ि जाइ छनि जे बच्चा बच्ची में शिक्षा और संस्कार पर सबसे बेसी ध्यान देनाय आवश्यक भ गेल अछि। युग परिवर्तन के दौर से गुजरि रहल अछि, दुनिया बदल गेल अछि। एहि मे हमरा सब के दायित्व और पैघ भ रहल अछि, किया हम सब जननी छी, माता छी। और माता जे होइत अछि जे नेना भुटका के गोदी में अपन

0: दूध पिया के आगाँ बढ़बैत अछि, अपन बोलीसँ ओकरा बजनाइ सिखबैत अछि, तैं ओकरो कर्तव्य भऽ जाइ छै जे पिता आओर माता मिलकर बच्चामे शिक्षा आओर संस्कार एहन तरह परोसै जे आगू ओकर भविष्य उज्ज्वल होय। दरभंगा संत शिरोमणि रविदास के 650वीं जयंती सहजता संग मनाओल गेल। एहि अवसर पर पवित्र कलश यात्रा भेल, आमजन संत रविदास के श्रद्धा सुमन अर्पित केलाह। एहि अवसर पर सरसता पदयात्रा सेहो भेल, आमजन रविदास के उक्त सब के सुनलनि और ओकरा आत्मसात केलनि। दरभंगा हवाई अड्डा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करबाक हेतु करीब 90 एकड़ जमीन जिला प्रशासन अधिग्रहण केलनि अछि। एयरपोर्ट के आगू बढ़ में विस्तार देवा में एहि जमीन के काज होयत। एहि में सँ 115 किसान के एहन जमीन चिन्हित कयल गेल, जाहि में सँ मात्र 80 और 90 टा किसान के एखन तक मुआवजा भेटल अछि, शेष किसान के मुआवजा नहीं भेटल अछि, जाहि कारण विकास में जमीन अधिग्रहण पूरा नहीं कऽ कऽ जिला प्रशासन एयरपोर्ट अथॉरिटी के देलकिन है, जाहि कारण सँ विकास काज आब धीरे भऽ गेल अछि और ओ जमीन आवश्यक भऽ गेलै। किसान के पूर्णतः मुआवजा भेटला के बादे किसान जमीन देत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पीजी प्रथम सेमेस्टर में बचल 4,045 सीट के फेर से एक आवेदन दल गया। सत्र 2026-28 में नामांकन से वंचित रहल आवेदक सब छात्र छात्रा सब ई खबर सुन ली। विश्वविद्यालय प्रशासन रिक्त सीट भरबा के लेल ऑनलाइन आवेदन के एक और अवसर प्रदान कलन अछि। इच्छुक अभ्यर्थी 21 अगस्त से 23 अगस्त तक निर्धारित शुल्क के साथ विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई आवेदन कऽ सकै छी। एहि संग हालचाल संपन्न भेल। नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
2: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: और किछ मौसम के जानकारी लोली। आजुक दिन के उच्चतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रह सकते अछि और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकते अछि। तेज बरसात चलबाक संभावना अछि और वर्षा के संभावना सेहो बनल अछि। कतौ कतौ ठनका सेहो खसि सकते अछि। ई छल मौसम के जानकारी।
3: श्रोता, आप सुन रहे थे हालचाल और मौसम संबंधी ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे प्रवीण कुमार झा। एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने इस कार्यक्रम नमस्कार मिथिला के आज के इस अंक में। प्रवीण जी
0: जी,
3: हम चाहेंगे कि मीठी मीठी ये बातें और जो बेहतर जो चीज़ें हम लोग लेकर आए ना
0: जी
3: श्रोताओं के लिए, वो बारी बारी से उन तक पहुंचती रहनी चाहिए।
0: निश्चित निश्चित, और परोसा नहीं तो हमर काजे और श्रोता सब के सुनना है। असंग संग सुनला के बाद बहुतो श्रोता गुम भ जाए छे, से नहीं आप किछ चिट्ठी पत्री के सेहो लिखे के युग छे, ओहो लिखियो। आ चिट्ठी पत्री तो मोबाइलो से लिखाएल जाए छे, ऑनलाइन अहाँ हमर कमेंट कर सकै छी। कोनो तरह यदि विचार सुझाव देवा अहाँ के मन भऽ रहल अछि तो अहाँ दऽ सकै छी, एकरा हमसब आत्मसात करै छी। दिवारात्रि रेडियो अहाँ के सेवा में अछि, आकाशवाणी दरभंगा। हमसब किछ भाई गप सप कऽ ली, सब दिन हमसब गीत नाद संग विषय लऽ कऽ अबै छी और ओहि पर विचार विमर्श करै छी आ श्रोता के एहि पर सो सहयोग चाहै छी जे ओहो अपन ओहि पर किछु विचार राखै।
3: प्रवीण जी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समय आपसे लेना चाहेंगे। अभी अभी आपने कहा कि श्रोताओं को अपने मन की जो बातें वो हम तक पहुंचाने के लिए कई माध्यम है।
0: जी जी।
3: तो मैं अपने सुनने वालों को हम लोग बताना चाहते हैं कि देखिए, आपकी बातें अब फोन कॉल के माध्यम से भी आप तक सुनवाई जाएंगी। जो हमारा कार्यक्रम है ना, महीने के पहले रविवार को जो होता है।
0: जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल
3: सत्य। रेडियो रेडियो के प्रति आपके दिल में जो भी अनुभव है, रेडियो आपने कब से सुनना शुरू किया, रेडियो में आप क्या बेहतर चाहते हैं, रेडियो की ऐसी कौन सी बात है जो आपके दिल को छूती है, ये सारी बातें आप फोन कॉल्स के माध्यम

0: से हम तक पहुंचा सकते हैं, उसकी सूचना हम समय समय पर आप तक आपके पास पहुंचाते रहेंगे। और प्रवीण जी, आज हम लोगों ने चर्चा का विषय क्या रखा है?
1: जी, विषय हमर अछि जे मातृभाषा और सांस्कृतिक अस्मिता।
0: मतलब बिल्कुल जड़ से जुड़ी बात आज हम अपने श्रोताओं के साथ करेंगे, है
1: जी
0: ना?
1: जी जी देखियो, माय के भाषा यानी ओकरे मातृभाषा कहै छै, यानी जे माय जन्म देलक, पालन केलक और जे बोली ओ बाजि कऽ हमरा बजेबाक प्रयास केलक, हमरा बाजब सिखेलक, वह थिक मातृभाषा। देशिल बैना सबजन मिठा, कहियो विद्यापति लिखने रहथि। जखन विद्यापति संस्कृतमे लिखै छलाह तऽ संस्कृतके विद्वाने टा जे ओहि समयमे छलाह वह टा ओकरा बोधगामी कह सकै छलाह, बाँकी जनके लेल ओ एकटा मात्र साहित्य रहै। विद्यापति बहुत गूढ़ मंथन केला और तखन अयला जे नहि, संस्कृत तऽ अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गेल, आब हमरा देशिल वैना यानी देश यानी मातृ माय के भाषा, माटि के भाषा अलग अलग होइ छै, स्वाभाविक छै, बदलै छै। कहै छै 10 कोसी पर बोली और टोन बदलि जाइ छै, लेकिन भाषा जे छै हमर सबके भाषा जेना मैथिली छी, और मैथिली हमसब एहन भाषा एहि दुआरे कहै छियै जे मातृभाषा यानी माय जे भाषा हमरा पहिल बेर सिखेलक, कानमे शब्द गेल, ओ मैथिली छलै और तै ओकरा मातृभाषा कहल जाइ छै। और ओकर अस्मिता के, ओकर संस्कृत के, ओकर साहित्य के रक्षणा केनाइ हमर नव पीढ़ी के ओतबे दायित्व अछि, किया तऽ हमर विरासत ततेक समृद्ध अछि जकर भार हम लऽ कऽ अगला पीढ़ी के दी से नीक रहत। तै अस्मिता के रक्षा के लेल मैथिल जन जन तैयार रहै छथि, ओहिना अन्य कोनो मातृभाषा जे छै ओकरो हमसब सम्मान करै छियै, किया तऽ ओतहो के जे निवासी छथि हुनकर मातृभाषा तऽ वएह छनि। बात मातृभाषा के छै, ओकर अस्मिता के छै।
0: माँ किसी की भी हो, माँ माँ होती है और वो हमेशा सम्माननीय और पूजनीय होती है। बिल्कुल अच्छी बात कहा आपने प्रवीण जी, कि जब हम पहली बार जिस भाषा में हम बोलना शुरू करते हैं, हम पहली बार जिस हमारे कानों को जो भाषा सुनने को मिलती है, वही तो हमारी मातृभाषा होती है। ये हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश के हिसाब से भले ही बदल जाए, लेकिन हम सब एक होते हैं, हम सब भारतीय हैं और हम सब भारतवासी हैं।
1: सत्य कहलहुँ। और देखियो, कोनो समाज आदिकालसँ तखने आगू बढ़ल जकर अपन लिपि छै, अपन भाषा कहै छै, भाषाके बाद अपन साहित्य छै, ओकर साहित्यकार छै, ओकर कथाकार छै, ओकर गीतकार छै, ओकर सङ्गीतकार छै, ओकर कला क्षेत्रसँ जुड़ल लोकसब छै, सब मिलकऽ से ओहि क्षेत्र ओहि भाषाके से आगू बढ़बै छै। सबक सहयोगसँ कोनो भाषा आगू बढ़ैत अछि और ओकर अस्मिताके रक्षा केनाइ के दायित्व ओहि भाषा प्रेमी सबके दायित्व भऽ जाइ छै, ओतबे पैघ जे वएह दायित्व बोध लऽ कऽ नया पीढ़ीके हाथमे अहाँ सजल धजल धरोहर समर्पित करियौ तऽ ओ पीढ़ी दर पीढ़ी चलैत रहतै। और एकटा तऽ कहल गेल छै जे संस्कार आर धरोहर विहीन समाज पाषाण भऽ जाइत अछि, यानी पत्थर भऽ जाइत अछि जकरामे कोनो तरहक संवेदना नहीं हुई छी।
0: प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो मातृभाषा होती है ना, उस मातृभाषा का सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिलता है कि हमारे मन में जो विचार और भावनाएं होती है ना, अभिव्यक्तियाँ, उनको प्रकट करने में आसानी होती है अपनी भाषा में, हम साहित्य के रूप में, संगीत के रूप में। और ये बड़ी सुखद बात है कि अब हर क्षेत्र के मातृभाषा के प्रति उस क्षेत्र के लोगों में एक विशेष अनुराग तो स्वाभाविक है, जन्म से ही होता है, लेकिन वे उसके संवर्धन, उनके संरक्षण में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये बड़ी सुखद बात है।
1: और आप तो वैज्ञानों को ये बात के प्रूफ कह दलक है, यानी मोहर लगा दलक, जे बच्चा बच्ची में, ननिहाल में जत्ते बोधगामी कोनो विषय अब मातृभाषा में अहाँ सिखा सकै छिए और जत्ते जल्दी वो पकड़त तते अन्य कोनो भाषा अहाँ प्रयोग करबै तऽ
0: स्वाभाविक है, वो समझने की शक्ति हो या समझाने की शक्ति, हम अपनी मातृभाषा में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है ना, कि ये इसलिए भी आवश्यक है हमें अपनी मातृभाषा का संरक्षण और संवर्धन करना, क्योंकि आज प्रवीण जी हमारे देश की कई क्षेत्र की ऐसी मातृभाषाएं उस क्षेत्र विशेष की जो विलुप्त हो चुकी है।
1: नहीं, वो चिंता के विषय है, हमारे कहना में जो वह अस्मिता छे ओकरा रक्षा के नए कूट कूट कर भरना। देखियो, हम भाषा प्रेमी छी, रहब ई जनै छी और हम

0: अनेको भाषा दुनिया के सीख ले। सुस्वागतम, हमारा स्वागतम है, सबके स्वागतम है, जतेक भाषा सीख सकी
1: एक बेहतर आदत है,
0: आदत है। लेकिन जखन अहाँ के अपन माय के भाषा कान में जाए तो निश्चित रूप से अहाँ के एक शरीर में से सुरसुराहट उत्पन्न है, यानी रोमांस है अहाँ के, आ वो एक सहज हृदय से प्रेम अनुभूति है अहाँ के जे अपन भाषा लग रहा।
1: आप लाख कोशिश कर ले, आपके दर्द और आपकी खुशी में आपके मुंह से स्वतः ही आपकी मातृभाषा निकलेगी।
0: ऐसा ती कह लो,
1: और यही वो चीज है जो आपकी आत्मा से जुड़ी होती है।
0: हाँ।
1: आप लाख अपनी भाषा बदल लो, आप लाख अपनी बातों को बोलने का अंदाज बदल लो, लेकिन एक बात याद रखिएगा प्रवीण जी, जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो या बहुत ज्यादा खुशी हो तो आपके मुंह से जो सबसे पहले शब्द आएंगे ना वो आपकी मातृभाषा के ही शब्द होंगे। प्रवीण जी, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बातों का ये सिलसिला लगातार कुछ ज्यादा देर तक ना करें, श्रोताओं को गीत संगीत का भी इंतजार होता है, तो हम चाहेंगे कि अगर आप
0: नहीं, हाँ एकदम सत्य कही, आओ सबसे पहले आप मधुर संगीत सुनिए।

0: कोरा कागज था ये मन मेरा।
1: एखन ई फिल्म संगीत सुनलहुँ, नीक लागल हैत। रचनाकार गीतकार जे रहै छथि से रचना करै छथि, गायक गबै छथि, संगीतकार संगीत दै छथिन, लेकिन जे मूल भाव रहै छै गीतकारके ओकर शब्दके ओहिपर विवेचना हेबाक चाही। तऽ एहिपर गपशप करू हमसभ।
0: हाँ, समय आज हमारे पास कम है।
1: हाँ, और आज शुक्र दिन अछि आ शुक्र दिन के सब शुक्र दिन के हमसभ सुनै छी गांधी कथा। तऽ आओ सुनै छी गांधी कथा।
2: गांधी जी का जीवन परिवर्तन। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। वे पंसारी जाति के थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई, जहां गणित विषय में उन्होंने अपने आप को काफ़ी कमज़ोर पाया। उनका कहना था कि वे झेपू, शर्मीले और कम बुद्धि वाले छात्र हुआ करते थे। 7 वर्ष की आयु में उनका परिवार कठियावार के अन्य रियासत राजकोट में आकर बस गया। उनके पिता पूर्व में भी दीवान थे और यहाँ भी उनके पिता को दीवान बना दिया गया। 11 साल की उम्र में उनका नामांकन अल्फ्रेड हाई स्कूल में करा दिया गया। मई 1883 में 13.5 वर्ष की आयु में उनका विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबाई मकन जी से करा दिया गया। उनकी पत्नी का नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया, जिसे लोग प्यार से वा कहते थे। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल और राजकोट से हाई स्कूल किया। हाई स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांधी जी ने समलदास कॉलेज भावनगर में नामांकन करवाया। इसी बीच 1885 में उनके पिता का देहांत हो गया। उस समय उनकी आयु 15 वर्ष की थी। उसी वर्ष उन्हें एक संतान प्राप्त हुआ जो कुछ ही दिन जीवित रही। मोहनदास और कस्तूरबा के 4 संतान हुई जो सभी पुत्र थे। 1888 में हीरालाल गांधी, 1892 में मनीलाल गांधी, 1897 में रामदास गांधी और 1900 में देवदास गांधी का जन्म हुआ। नवंबर 1887 में 18 वर्षीय गांधी ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 4 सितंबर 1988 को गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। कानून की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में नामांकन करवाया। इंग्लैंड में अपनी कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद गांधी जी राजकोट में कुछ समय बिताया, फिर बम्बई में अपने कानूनी प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया। हालांकि बम्बई में वे खुद को स्थापित नहीं कर सके और राजकोट लौट आए और यहां भी उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस की। इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने बतौर वकील 20 सालों से अधिक तक काम किया। अफ्रीका में उन दिनों ब्रिटिश सरकार का शासन था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी को भारतीयों से किए जा रहे भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसी क्रम में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद भी तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने के लिए कहा गया और इनकार करने पर अंग्रेज के द्वारा ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। एक बार दक्षिण अफ्रीका में घोड़ा गाड़ी से सफर कर रहे थे तो उन्हें अंग्रेजी यात्री के लिए सीट छोड़ने के लिए कहा गया।

उन्होंने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया तो तांगे का चालक ने उन्हें जबरदस्ती सीट पर से हटा दिया, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया, उन्हें पैदान पर ही यात्रा करनी पड़ी। इतना ही नहीं, कई होटलों में उन्हें प्रवेश भी नहीं करने दिया गया। इस प्रकार की कई घटनाओं में वो अपमानित हुए। इन्हीं घटनाओं के फलस्वरूप गांधी के जीवन में एक नया मोड़ आया और वे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। वास्तव में यह गांधी का जीवन परिवर्तन था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हो रहे रंगभेद और नस्लभेद का विरोध

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। वास्तव में यह गांधी का जीवन परिवर्तन था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हो रहे रंगभेद और नस्लभेद का विरोध किया। वहां रहकर उन्होंने भारतीयों ही नहीं बल्कि अन्य वंचित तबके के लोगों को भी न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। ऐसा ही एक संघर्ष था द ग्रेट मार्च, जो महात्मा गांधी के लिए विदेश में सबसे बड़ी जीत बनकर उभरा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक युद्ध छेड़ रखा था। उन्होंने वहां फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, जहां रहकर वे आंदोलन का संचालन करते थे। उनके साथ जो लोग थे वे गांधी जी के सादगीपूर्ण तरीके से जीवन यापन के सिद्धांतों का पालन करते थे। एक दिन एक युवक गांधी जी के पास आया और उनके आश्रम में रहने की इच्छा व्यक्त की। उसे वहां के नियमों की जानकारी दी गई। उसने नियमों का पालन करने पर सहमति जताई। नियमों में से एक था एक माह तक बिना नमक का भोजन करना। युवक ने नियमों को पालन करने का संकल्प लिया। उन्हें आश्रम में रहने की अनुमति मिली। कुछ समय तक युवक ने उत्साहपूर्वक नियमों का अनुपालन किया, परंतु कुछ दिनों के बाद उसका मन नमक रहित भोजन से उब गया और उसने डरबन से मसालेदार स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और स्वयं भी खाया था। आश्रम के अन्य मित्रों को भी खिलाया। इसकी जानकारी गांधी जी को मिल गया। गांधी जी ने आश्रम के सभी सदस्यों को बुलाकर पूछा, क्या तुम लोगों ने बाहर से मंगवाकर स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण किया है? सभी ने इनकार कर दिया। यह सुनते ही गांधी जी ने अपने दोनों गालों पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और बोले, मुझसे सच्चाई छिपाने में कसूर तुम्हारा नहीं मेरा ही है, क्योंकि शायद अभी तक मैंने पूर्ण सत्य का गुण प्राप्त नहीं किया है, इसलिए सत्य मुझसे दूर भागता है। गांधी जी को निरंतर स्वयं को सजा देते देख उन सभी को अपने भूल का एहसास हुआ और उन्होंने गांधी जी से क्षमा याचना की। सत्य के आग्रही को समाज के नैतिक सुधार के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। वस्तुतः सत्संकल्प सत्समाज का निर्माता होता है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने नेतृत्व और राजनीति को अपनी शैली और सीमित पैमाने पर संघर्ष की नई तकनीकों को विकसित किया, जो प्रतिस्पर्धा राजनीतिक धाराओं के विरोध से अबाधित रहा। 21 साल बाद गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर गांधी 1915 में अफ्रीका से भारत लौट आए। 9 जनवरी 1915 की सुबह बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी और कस्तूरबा पहुंचे तो वहाँ मौजूद हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। स्वदेश वापसी के बाद गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। महात्मा गांधी के आने से पहले कांग्रेस पार्टी में दो धरे बन चुके थे, एक नरम और दूसरा गरम दल। कई नेता अंग्रेजों को उनकी ही जुबान में जवाब देना चाहते थे, जबकि कुछ शांति का मार्ग अपनाकर अपना संघर्ष जारी रखने के पक्ष में थे। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना और सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन को अपना अस्त्र बनाया। गांधी जी को पहली उपलब्धि चंपारण सत्याग्रह और खेरा सत्याग्रह में मिली। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को एक आंदोलन हुआ, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। इसमें बिहार के राजकुमार शुक्ल और मुकुटधारी प्रसाद चौहान ने महात्मा जी को भरपूर साथ दिया था। चंपारण बिहार के पश्चिमोत्तर इलाके में आता है। इसकी सीमाएं नेपाल से सटती है। यहाँ पर उस समय अंग्रेजों ने हर बीघे में 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती किसानों को निश्चित रूप से करने का नियम बना रखा था। पूरे देश में बंगाल के अलावा यहीं पर नील की खेती होती थी। इससे किसानों को हानि उठाना पड़ता था, साथ ही उन पर 42 तरह के कर डाले गए थे। महात्मा गांधी ने पीड़ित किसानों के बयानों को कलमबद्ध किया था। बिना कांग्रेस का प्रत्यक्ष साथ लिए यह लड़ाई सत्य और अहिंसा के बल पर लड़ी। इसकी वहां के अखबारों में भरपूर चर्चा हुई, जिससे आंदोलन को जनता का खूब सहयोग मिला और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। इस तरह पिछले 135 सालों से चली आ रही नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई। साथ ही नीले किसानों का शोषण भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। यह आंदोलन आज़ादी के संघर्ष का एक मजबूत प्रतीक बन गया और महात्मा गांधी की असफलता आज़ादी के संघर्ष को एक नया स्वरूप प्रदान किया। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 का खेरा सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में आयोजित दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था। खेरा सत्याग्रह गुजरात के खेरा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की करतूती के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, जिसे असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। सन 1917 में गुजरात जिले के पूरे साल की फसल मारी गई। फसल चौथाई भी नहीं हुई थी। किसान लगान माफ करने के लिए कह रहा था, परंतु सरकारी अधिकारी किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं थे। किसानों की जब सारी प्रार्थनाएं निष्फल हो गई, तब महात्मा गांधी ने उन्हें सत्याग्रह करने की सलाह दी
और लोगों से कार्यकर्ता और स्वयंसेवक बनने की अपील की।

0: गांधी जी की अपील पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी खासी चलती हुई वकालत छोड़कर गांधी जी के सहयोग के लिए सामने आए और अपने राजनीतिक जीवन का सिग्नेश किया। महात्मा गांधी का यह सत्याग्रह आंदोलन भी सफल रहा और सरकार ने बिना कोई सार्वजनिक घोषणा किए लगान की वसूली बंद कर दी। इन दोनों सत्याग्रह आंदोलन के परिणाम स्वरूप गांधी जी की ख्याति देश भर में फैल गई। गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र के रूप में प्रयोग किया। दिसंबर 1921 में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए। उन्होंने कांग्रेस को स्वराज के नाम वाले एक उद्देश्य के साथ संगठित किया। पार्टी में सदस्यता सांकेतिक शुल्क के भुगतान पर सभी के लिए खुली थी। गांधी जी ने अपने हिंसात्मक मंच को स्वदेशी नीति में शामिल करने के लिए विस्तार किया। इसमें विदेशी वस्तुओं, खासकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। उनका कहना था कि सभी लोग अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वस्त्रों की अपेक्षा हमारे अपने लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई खादी वस्त्र पहने। गांधी जी ने पुरुषों एवं महिलाओं से प्रतिदिन खादी वस्त्र के लिए सूत काटने की अपील की। यह स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति समर्पण एवं अनुशासन जागृत करने की एक अच्छी नीति थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने ब्रिटिश की शैक्षणिक संस्थाओं तथा अदालतों का बहिष्कार करने, सरकारी नौकरियों को छोड़ने तथा सरकार से प्राप्त तमगों और सम्मान वापस लौटाने का भी अनुरोध किया और असहयोग आंदोलन का विगुल फूका। इस असहयोग आंदोलन में समाज के सही वर्गों की भागीदारी बढ़ी और वह स्वतंत्रता आंदोलन को अपार बल प्रदान किया। फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ।
1: खाना अपने सब सुन लो गांधी कथा सब सुख दिन का हम सब सुने छे। फिर अगला सुख का सुनब। आ देखियो युग बदल गेल अछि, स्मार्ट युग कहल जा रहल अछि एकरा। किएक तऽ हाथ हाथ में से आब मोबाइल आ मोबाइल संगे पूरा कर लो दुनिया मुट्ठी में, यानी बैंक रुपया सेहो मोबाइले में, यानी जे काज करब से ऑनलाइन कऽ लेब। आ 80% आदमी आब ऑनलाइन कारोबार करै छथि। एहिमे सबसे पैघ समस्या आबि रहल अछि साइबर ठगी से, यानी साइबर ठग यानी स्मार्ट ठग जे छथि ओहि दुनिया में आप बेसी पसरि गेल अछि। एहि के प्रति आम जन के जागरूक भेनाइ अति आवश्यक भऽ गेल अछि, किएक तऽ युग परिवर्तन के दौर से गुजरि रहल अछि। ओना ठाम ठाम आब साइबर थाना सेहो अपराध रोकऽ के लेल तैयार भऽ गेल छथि कानून के पालन कराबा के लेल। लेकिन ठग सँ आम जनता के बचक चाही आ बचाबक चाही। तऽ सबसे पहले मोबाइल पर केओ कोनो अवसर या केओ अहाँ के फोन पर कोनो जानकारी मंगैया तो ओहि जानकारी अहाँ नहि साझा करी, कथी में भी नहि साझा करी। अहाँ सदेह चलि जाओ या बैंक से अबैया फोन या कतौ से फोन अबैया, पुलिस प्रशासन द्वारा फोन अबैया या नकली रूप धारण कऽ कऽ साइबर अपराधी सब विभिन्न विभिन्न रूप सँ फोन करैत अछि, अहाँके जाँचैत परखैत अछि, अहाँके डिगऽ के नहि अछि। अहाँके बचाव के एकमात्र उपाय अछि जे कोनो तरहक यदि जानकारी मोबाइल पर मांगल जा रहल अछि साझा करल के तऽ अहाँ नहि दी। साइबर ठगी सँ बचऽ के उपाय बहुत छै, लेकिन ई सबसँ मूल उपाय भेल। कार्यक्रम में आप समय
2: कहे जे आपकी बात को थोड़ा सा मैं पूरा करना चाहूंगा कि कुल मिलाकर श्रोताओं इस बात को समझ लीजिए कि RBI ने साफ ये निर्देश दे रखा है कि वे कोई भी बैंक आपसे टेलीफोन पे कोई भी सूचना आपके खाता के संबंध में नहीं ले सकती है। अगर आपसे आपके खाता के संबंध में कोई भी बात की जाती है या आपको कोई OTP वगैरह नंबर बताने के लिए कहा जाता है तो बिल्कुल सतर्क हो जाए और तुरंत अपने बैंक में जाकर संपर्क करें, हो सकता है आपके साथ धोखा भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको बस करना क्या है ना कि सतर्क रहना है। होता क्या है कि जब तकनीक का जमाना है, दुनिया बदलती है, तो ये जो ठगी करने वाले लोग होते हैं ना वो भी तो हमारे ही बीच में होते हैं, तो वो भी अपने रास्तों को बदलते हैं, वो उन्हीं रास्तों को पकड़ते हैं जिन रास्तों से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा फ़ोन कॉल जो आपको ये कहता है कि मैं फलाना अधिकारी या फलाना बैंक ऑफिसर बोल रहा हूँ, तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाएं और तुरंत अपने संबंधित बैंक या संबंधित विभाग से संपर्क करें और ठगी के इस जाल से बचे।
1: और कोनो तरह डाटा ककरो से साझा नहीं करी, खासकर पिन नंबर होए या कोड होए, ई कखनो मोबाइल पर कोनो तरहक जानकारी अहाँ ककरो से नहीं साझा नहीं करू तो सुरक्षित रहब, नहीं तो झांसा में पड़ब तो फिर अहाँ साइबर के ठग के चंगुल
2: जाल में फंस जाएंगे।
1: तो सतर्क रही, इस सब के प्रसार प्रसार करी और समय कहित अछि आब चलैत चलैत एकटा फिल्म संगी के आनंद ली।

0: बिल्कुल, सावन के महीने की ये मस्ती, ये सुहानापन आपकी ज़िंदगी में ता उम्र बना रहे। इस गीत को सुनने के बाद तो हमारे दिल से आपके लिए बस यही ख्वाहिश निकल रही है क्या प्रवीण जी?
1: और समय कहित अछि जे कष्टो अछि से पूरा गाना नहीं सुनेलहुँ। समय कहित अछि जे हमरा आज्ञा लेबाक बेर आबि गेल अछि हमरा प्रवीण के।
0: और साथ ही संजीव कुमार सुधाकर को दीजिए इस कार्यक्रम के आज के इस अंक से विदा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार
1: नमस्कार मिथिला।
0: मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम।
1: हे कता छी यौ?
2: की बात, की कहै छी?
1: हे ध्यान नहि अछि, रेडियो खोलू ने जल्दी, गाँव घर कार्यक्रम छूट जायत।
2: ठीके कहलहुँ, हमरा तऽ हे ध्याने नहि छल। गाम घर कार्यक्रममे नीक नीक जानकारीके बात सब भाई बहिन लोकनि सब कहै छथिन। हे हे हे लिया, मोबाइल पर लगा दै छी, सुनैत रहू, अपन काज सेहो करैत रहू।
1: से तऽ हमरा बुझले नहि छल जे आकाशवाणी दरभंगा आप मोबाइलो पर सुन सकै छी।
2: हाँ ये रेडियो सेट नहि अइ तऽ आकाशवाणी के ऐप पर जाकर सुन सकै छी। हे अकर ऐप नोट कर ली, न्यूज ऑन AIR, एकरा डाउनलोड

0: करी आ कतौ बैस कऽ अपन मोबाइल पर आकाशवाणी दरभंगा सुनैत रहू, अपन काज करैत रहू।
1: तऽ हमहुँ कहब जे सुनैत रही कार्यक्रम गाँव घर।
0: अहे आकाशवाणी हरदम सुनैत रहू गाम घर कार्यक्रम नीक नीक जानकारी के लेल, बुझलहुँ ने। अहे अपना संगे संगे आनो के कहब।
2: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता भक्ति और आस्था के साथ, प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आबि रहल छी। एक क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम सूचना शिक्षा और मनोरंजन एक साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

दो पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग चालान से बचने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए अवश्य करें। बारिश के इन दिनों अपने घर के छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखें। उन्हें वैसी जगह खेलने जाने से मना करें जहां पानी से भरे गड्ढे हो, या वैसी जगह जहां जेसीबी द्वारा खोदे ऐसे गड्ढे जो पानी से भरे हो। छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अपने घर के छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखें।

0: इस समय सुबह के 8 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का

0: आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, NEET या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार

0: अस्थाई उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
4: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पतिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पतिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
0: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार

0: वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only 2 stanzas of Vande Mataram instead of full rendition. India to host 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today, BRICS Tourism Ministers to meet in Jaipur. National Testing Agency says Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students, rejects concerns of being expensive. US imposes fresh sanctions on Hezbollah, citing its ties to Iranian government. And in hockey, Indian women's team to take on Netherlands in the first match of second pool phase at FIH World Cup in Amstelveen today. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. More from our correspondent.
3: Calling for greater interoperability and effective

इलाकों में आज ऊंची ऊंची लहरें उठने के तनाजुर में समंदर में उथल पुथल रहने का इम्कान है। समंदरी उलूम की खिदमात से मुतालिक कौमी सेंटर के मुताबिक तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुज़ा, एर्नाकुलम, मल्लापुरम, कोझीकोड और कासरगोड के साहिल के नज़दीक समंदर में 1 से लेकर 1.5 मीटर ऊंचाई तक लहरें उठने की वार्निंग जारी की गई है। हॉकी में आज एम्स्टलफेन में FIH आलमी कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मुकाबले में भारतीय खवातीन टीम नीदरलैंड्स का सामना करेगी। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। इससे कबल भारतीय टीम कल पूल डी के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ मैच बराबरी पर ख़त्म करने के बाद दूसरे दौर में पहुंची। इस मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। दोनों ही टीमें गोल का मौका बना पाईं लेकिन गोल करने में नाकाम रहीं। भारत ने दूसरे हाफ में इंग्लैंड के कई पेनल्टी कॉर्नर रोके। बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में BWF आलमी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मर्द खवातीन के डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की डबल्स की भारतीय

0: दोनों ही टीमें गोल का मौका बना पाईं लेकिन गोल करने में नाकाम रहीं। भारत ने दूसरे हाफ में इंग्लैंड के कई पेनल्टी कॉर्नर रोके। बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में BWF आलमी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मर्द खवातीन के डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की डबल्स की भारतीय जोड़ी चीन के तीसरे दर्जे की जोड़ी का सामना करेगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ है फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी इश्य सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की सुर्खी है, भारत जापान दिफाई ताउन बढ़ाएंगे, बहरी सलामती के माहदे पर दस्तखत। अखबार ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमाया किया है कि वंदे मातरम पर कांग्रेस का फैसला मुल्क मुखालिफ और कानून की खुली खिलाफ वर्जी। अखबारात ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को भी अहमियत दी है कि हुकूमत लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच कायम करेगी। झारखंड में कामयाब उम्मीदवारों को राहत, इम्तिहानात मनसूख करने के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक, यह खबर इनकलाब में सफ़े अव्वल पर है। अखबारात ने मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम के बांग्लादेश के नए सदर मुंतखब होने की खबर को भी अहमियत दी है। अखबारात की दीगर अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं, ट्रंप का ईरान के खिलाफ गैर मामूली और तबाहकुन मौशी कार्रवाई का ऐलान।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम ने बंदिशें और रुकावटें दूर करके मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तवील मुद्दती नजरिया अख्तियार किए जाने पर जोर दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने की बजाय कौमी गीत के सिर्फ दो अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। भारत आज पुणे में ब्रिक्स मुल्कों के मवासलात महकमे के वजीरों की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा, जबकि ब्रिक्स के सियाहत महकमे के वजीरों की मीटिंग जयपुर में होगी। और हॉकी में आज एम्सल्फीन में FIH वर्ल्ड कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी पटना है। थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ, दिमाग मनाता है। कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खाई ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है, खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी नमक और तेल कम कीजिए।
2: खाद्य संरक्षा आयुक्त स्वास्थ्य विभाग बिहार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को अनुमति दी। राज्य में चीनी मिलों और व्यापारियों के स्टॉक की होगी जांच। प्रदेश में अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ही ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण मिलेगा। राज्य सरकार ने खरीफ मौसम के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू की। फसल क्षति के लिए 31 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे आवेदन। और 65वीं अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात की अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि चीनी की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने चीनी मिलों और व्यापारियों के स्टॉक की जांच के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने बताया कि चीनी मिलों को बिक्री के बाद अधिकतम 7 दिनों के भीतर चीनी को गोदाम से हटाना होगा। वहीं किसी डीलर के यहाँ 400 टन से अधिक चीनी का स्टॉक मिलने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इस बीच विभागीय सचिव धर्मेंद्र सिंह ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर और सीतामढ़ी के जिलाधिकारियों को वरीय उपसमाहर्ता और एक पदाधिकारी की संयुक्त जांच टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। ये टीमें चीनी मिलों और व्यापारियों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करेंगी। प्रदेश में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब विद्यार्थियों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ही ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण मिलेगा। पहले इस योजना के तहत 4 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता था। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि 2 लाख रुपए से अधिक की जरूरत वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त राशि के लिए बैंक से शिक्षा ऋण लेना होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार बैंक का चयन कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता,

0: विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE4 के विज्ञापन जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पटना के गर्दनी भाग में धरना पर बैठे छात्र एकल परीक्षा कराने और निगेटिव मार्किंग खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इधर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE4 के लिए दो चरणों में ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सभी मांगें पूरी करना संभव नहीं है।
1: कुछ लोग तो इसके लिए भी प्रदर्शन करेंगे कि परीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, तो जो मांग मानेंगे वही मान लेना चाहिए क्या? ये संभव नहीं है। हमें अच्छी प्रतिभा चाहिए। बिहार की सरकार ने और सामान्य प्रशासन विभाग ने और BPSC ने मिलकर के ये नियम बनाया है। ये नियम शिक्षा विभाग का नहीं है। हमारा काम था, हमने TRE4 की वैकेंसी जारी करवा दी। परीक्षा अगर दो है तो बहुत सारे बच्चों ने इसका स्वागत भी किया है।
0: राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालय अध्यक्ष अब ऐच्छिक और पारस्परिक तबादले का लाभ ले सकेंगे। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण संशोधन नियमावली 2026 में इसका प्रावधान किया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन के आदेश के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बिहार की विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे और योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए केंद्र से सहयोग का आग्रह करेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य सरकार ने चालू खरीफ मौसम के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू कर दी है। योजना के तहत किसान फसल क्षति के लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहकारिता विभाग के अनुसार अगहनी धान, भदई मकई, सोयाबीन, अगहनी आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी और मखाना की फसल को योजना में शामिल किया गया है। किसानों को इसके लिए किसी तरह का प्रीमियम नहीं देना होगा। किसान ई सहकारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या कार्यपालक सहायक की मदद से भी आवेदन किया जा सकता है। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट या टोल फ्री नंबर 1800-34-54-110 पर संपर्क किया जा सकता है। आज महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। वर्ष 2006 में आज ही के दिन उनका वाराणसी में निधन हुआ था। बक्सर के टुमराव में जन्मे इस महान कलाकार ने शहनाई को विश्व मंच पर पहचान दिलाई। संगीत के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने रात 9:55 के बाद DJ और लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह रोक लगाने को कहा है। दिन में भी ध्वनि निर्धारित डेसिबल

सीमा के भीतर ही रखनी होगी। न्यायमूर्ति राजीव रॉय ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी संबंधित पदाधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रदेश में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पटना के गांधी घाट में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। देखा घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर गया है। वहीं भागलपुर के कहलगांव और सुल्तानगंज में भी नदी चेतावनी स्तर को पार कर गई है। मुंगेर, बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार जिले में भी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। रेलवे ने भागलपुर और अहमदाबाद के बीच नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन की घोषणा की है। इस रूट पर चल रही अहमदाबाद पटना क्लोन स्पेशल को अब नियमित कर अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में संचालित किया जाएगा। यह ट्रेन 26 अगस्त से प्रत्येक बुधवार को अहमदाबाद से बख्तियारपुर मोकामा किउल अभयपुर जमालपुर और सुल्तानगंज के रास्ते परिचालित होगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को भागलपुर से रवाना होगी। 65वीं अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। नई दिल्ली में खेले गए मैच में बिहार ने तेलंगाना को 12-0 से हराकर अगले दौर में पहुंचने की अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। बिहार की टीम ने अब तक 3 मैचों में 38 गोल किए हैं और उसके खिलाफ एक भी गोल नहीं हुआ है। पहले मुकाबले में बिहार ने नेवी चिल्ड्रेन स्कूल को 23-0 और दूसरे मैच में सिक्किम को 3-0 से हराया था। बिहार का अगला मुकाबला 22 अगस्त को पिछले वर्ष की विजेता पश्चिम बंगाल से होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का प्रशासक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति न्यायाधीश एल नागेश्वर राव की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर की गई है। किशनगंज में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। ठाकुरगंज स्थित एसएसपी की 19वीं वाहिनी परिसर में हुई बैठक में दोनों देशों की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुजफ्फरपुर के चर्चित AK-47 तस्करी मामले में आरोपित भैरव त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय पुलिस के सहयोग से NIA ने उसे ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा रोड से गिरफ्तार किया। इस मामले में यह 6ठी गिरफ्तारी है। पटना की एक अदालत ने हत्या के 19 साल पुराने एक मामले में दोषी क्रांति मोहन सिंह को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं जहानाबाद की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के अपहरण के मामले में 3 दोषियों को 4-4 साल कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अररिया जिले के कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के महेशकूट के पास से पुलिस ने 240 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है बिहार में ग्रामीण खरीफों को 11 लाख पक्के घर बनेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम सम्राट चौधरी को स्वीकृति पत्र सौंपा। प्रभात खबर की सुर्खी है शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के घर से मिले 51 लाख के जेवर 25,88,000 कैश। दैनिक जागरण ने लिखा है चीनी 70 रुपये तो गुड़ 80 रुपये किलो तक बिक रहे बाजार में। दैनिक भास्कर लिखता है JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और FSO नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं अब मॉडल स्कूलों की जिम्मेदारी संभालेंगे अफसर। आज अखबार लिखता है राज्यपाल सचिवालय

0: के 4 स्टेनोग्राफर बर्खास्त। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। राज्य में चीनी मिलों और व्यापारियों के स्टॉक की होगी जांच। प्रदेश में अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ही ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण मिलेगा। राज्य सरकार ने खरीफ मौसम के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू की। फसल क्षति के लिए 31 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे आवेदन। और 65वीं अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: गन्ना किसानों के लिए सुनहरा अवसर।
2: गन्ना उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम की बीज विकास योजना के अंतर्गत आधार बीज के उत्पादन पर 70,000 प्रति हेक्टेयर, प्रमाणित बीज उत्पादन पर 70 रुपए प्रति क्विंटल, प्रमाणित एवं सत्यापित बीज के उपयोग पर 260 रुपए से 310 रुपए प्रति क्विंटल तथा सिंगल बर्ड प्लांटलेट पर 15,000 प्रति एकड़ तक आकर्षक अनुदान का लाभ उठाइए।
1: योजना का लाभ लेने के लिए ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। उन्नत बीज अपनाइए, अधिक उपज पाइए।
2: गन्ना उद्योग विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है। लीजिए पेश है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

21 अगस्त 1915 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बदायूं में पैदा होने वाली इस्मत ने उस दौर में आँख खोली जब औरत की आवाज़ को चार दीवारी तक महदूद रखना ही तहजीब समझा जाता था। मगर इस्मत की फितरत में ही बगावत और सच्चाई का मादा रचा बसा था। उन्होंने कलम उठाया तो रवायती रोमानी फिजाओं के बजाय मुतवस्सत तबके के मुस्लिम घरानों की अंदरूनी कशमकश, घुटन और औरत के दिली जज्बात को बेकमो कास्त सफ़ह कुर्तास पर बिखेर दिया। सामीन, बातें जारी रहेंगी।

0: इससे कबल आइए समाज फरमाएं बातें जिनसे जिंदगी सवरती है के तहत नशा समाज के लिए नासूर के मौजू पर मबनी ये मकाला पेश कर रहे हैं मौलाना अबू सालेह नदवी।
1: नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। नशे को अरबी में खमर कहते हैं और ख़म्र के तहत में हर वो नशीला मशरूब दाखिल है जो अक्ल को मुख्तल कर दे। ख़म्र के असली माना अगरचे सिर्फ़ शराब अंगूरी के थे, लेकिन बाद को ये लफ्ज़ हर किस्म की नशा आवर शराब के लिए इस्तेमाल होने लगा। शराब के लफ्ज़ से ये ना समझा जाए कि इससे मुराद को ये ख़ास किस्म की शराब है। क़ुरान ने इसके लिए ख़म्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ख़म्र कहते हैं छा जाने को, इसलिए हर वो शय जिसका खाना या पीना अक्ल और होश को छुपा ले वो ख़म्र में शामिल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर फरमाया, शराब ख़म्र वो है जो अक्ल को ढांक ले। मोहसिन इंसानियत नबी आखिरुज़्ज़मा सैदिना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो शय जो नशा पैदा करे हराम है। नीज़ फरमाया, जिसने दुनिया में शराब पी और उससे तौबा तिल्ला न किया वह आखिरत में इससे महरूम रहेगा। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ़ ले गए तो आपके सामने दस्ते गैब ने दो प्याले रखे, एक में दूध था और दूसरे में शराब। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठा लिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, उस खुदा की हमद जिसने आपको फितरत की राह दिखाई, अगर आप शराब का प्याला उठा लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। गोया शराब की मिसाल दुनिया में गुमराही की तस्वीर है। हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मोमिन शराब पीने लगता है तो उस वक्त उसका ईमान उससे रुखसत हो जाता है। ये भी फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि शराब का पीना बढ़ जाएगा। अल्लाह जल्ला शानहु ने अपनी आखिरी ग्रंथ कुरान करीम में एक उसूल दिया कि वला तआवनु अलल इस्म वल उदवान, यानी गुनाह और ज़ुल्म ज़्यादती के कामों में एक दूसरे की इयानत ना करो। इस उसूल की बुनियाद पर न सिर्फ शराब पीना बल्कि इसका पिलाना बनाना बेचना खरीदना लेना ले जाना सब हराम ठहराया गया। खुदा ने शराब पर इसके पीने वाले पिलाने वाले बेचने वाले खरीदने वाले दूसरों के लिए निचोड़ने वाले अपने लिए निचोड़ने वाले इसके ले जाने वाले और जिसके पास ले जाई जाए सब पर लानत फरमाई है। यह भी इरशाद हुआ कि हर नशे की चीज़ हराम है और जिसके ज़्यादा पीने से नशा हो उसका थोड़ा पीना भी वैसा ही हराम है। शराब के हराम करार दिए जाने के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसके इस्तेमाल से आदमी कम अज़ कम कुछ देर के लिए उस जौहर अक्ल तफक्कुर से महरूम होकर जो उसके परवरदिगार का खासुल खास अतिया अमारफत इलाही का वसीला है उन हैवानों के सफ़ में आ जाता है जिनको उनके पैदा करने वाले अक्ल तमीज़ की नेमत और अपनी ख़ास मार्फत की सलाहियत अता नहीं फरमाई है। और ये इंसान का अपने ऊपर बड़े से बड़ा जुल्म और अपने परवरदिगार की इंतहाई नाशुक्री है। इसके अलावा नशे की हालत में बसा औकात इससे इंतहाई नामुनासिब और शर्मनाक हरकतें सरजद होती हैं और वो शैतान का खिलौना बन जाता है। अलावा अजीं शराब नोशी के नतीजे में बाज़ औकात बड़े दुर्रस और तबाहकुन फसादात बरपा हो जाते हैं। इसीलिए तमाम आसमानी शरीयतों में इसको हराम करार दिया गया है और हर दौर के खुदा परस्त मुसलहीन और रूहानियत पसंद ने इससे परहेज किया है और इसके खिलाफ सख्त जद्दोजहद की है। शराबखोरी उन आदात रजीला में से है जिनकी बुराई खुली है, फिर भी ये कितनी अजीब बात है कि दुनिया की अक्सर कौमें इसमें मुलव्विस नज़र आती हैं। इस्लाम से पहले जो मजाहिब थे इनमें भी इसकी बुराई कुछ ना कुछ बयान की गई है और इसका पीना अच्छा नहीं समझा गया है, लेकिन इसको हराम कतई ठहराने की इज्जत सिर्फ़ इस्लाम को हासिल है। शराब अरब की घुट्टी में पड़ी थी, शराब पीना पिलाना अच्छे अच्छे घरानों में लुत्फ या तफरी का ज़रिया समझा जाता था। बीबियां शौहरों को और छोटे अपने बुज़ुर्गों को अपने हाथों से पिलाते थे। इस्लाम से पहले अगरचे बाज़ नेक बख्त लोगों ने शराब छोड़ दी थी, मगर सारा मुल्क इसी मुसीबत में गिरफ्तार था। लोग शराब पीते और मतवाले होकर आपस में लड़ते

0: सबसे अजीम है।
1: अभी आप समाअत फरमा रहे थे, हम्द पेश कर रहे थे मोहम्मद फरीद अनवर खान। समईन, जब भी इसमत चौगताई का नाम आता है, उनके शाहकार अफसाने लिहाफ का तज़किरा ज़रूर होता है। इस अफसाने पर आयद होने वाला फहाशी का मुकदमा और लाहौर हाई कोर्ट में उनकी पुरवकार पेशी दरअसल उनके अदबी वक़ार और सच्चाई की फतह साबित हुई। उन्होंने कभी सस्ती शोहरत के लिए नहीं लिखा, बल्कि उस सच्चाई को कलमबंद किया जिसे देखकर मुआशरा आंखें चुरा लेता था। उनके कलम ने सिर्फ लिहाफ ही नहीं तख्लीक किया, बल्कि चौथी का जोड़ा, गेंदा, दो हाथ और अमर बेल जैसे अनगिनत अफसानों के ज़रिए समाजी नाइंसाफियों, तबकाती तफरीक और जहेज जैसी लानतों पर गहरे तंज किए। उनका नावल टेढ़ी लकीर

तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता होकर इस्मत ने मंटो, कृष्ण चंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी जैसे हमअसरों के शाना बशाना उर्दू फिक्शन को एक नया उफक बख्शा। मंटो और इस्मत की अदबी रफाकत उर्दू दुनिया की अनोखी तरीन कहानियों में से एक है। इस्मत चुगताई सिर्फ एक अदीबा नहीं थी, वह अपने अहद का एक पूरा दबिस्तान थी। एक ऐसी औरत जो वक्त के धारे के खिलाफ तैरी, जिसने समाज के बनाए हुए खोखले मेयारों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और आखिर दम तक अपनी आज़ादी फ़िक्र पर कायम रहीं। आज इसमें चुगताई की यौम विलादत के मौके पर हम उर्दू को की उस अजीम बेटी को खिराज अकीदत पेश करते हैं। इसमत अपना आज हमारे दरमियान जिस्मानी तौर पर भले ही मौजूद नहीं, मगर उनकी लिखी हुई कहानियाँ, उनके तीखे जुमले और उनके सच्चाई की मशाल हमें उर्दू अदब के दामन की को हमेशा रोशन रखेगी।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम सूचना शिक्षा और मनोरंजन एक साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
1: हे कता छी आओ?
2: की बात की कहै छी?
1: हे ध्यान नै अछि, रेडियो खोलू ने जल्दी, गाँव घर कार्यक्रम छूट जायत।
2: ठीके कहलहुँ, हमरा तऽ हे ध्याने नै छल। गाम घर कार्यक्रम मे नीक नीक जानकारी के बात सब भाई बहिन लोकनि सब कहै छथिन। हे हे हे लिया, मोबाइल पर लगा दै छी, सुनैत रहू, अपन काज सेहो करैत रहू।
1: से तऽ हमरा बुझले नै छल जे आकाशवाणी दरभंगा आप मोबाइलो पर सुन सकै छी।
2: हाँ ये रेडियो सेट नहीं है तो आकाशवाणी के ऐप पर जाकर सुन सके छी। हे अकर ऐप नोट करी, न्यूज ऑन AIR, एकरा डाउनलोड करी आ कतौ बैस कर अपन मोबाइल पर आकाशवाणी दरभंगा सुनैत रहू, अपन काज करैत रहू।
1: तो हमहू कहब जे सुनैत रही कार्यक्रम गाँव घर।
2: हे आकाशवाणी हरदम सुनैत रहू गाम घर कार्यक्रम नीक नीक जानकारी के लेल, बुझलौ ने? हे अपना संगे संगे आनो के कहब।
0: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता भक्ति और आस्था के साथ, प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम YouTube पर सुनने के लिए हमारे चैनल AIR दरभंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। आकाशवाणी दरभंगा, सूचना और मनोरंजन एक साथ।
1: यहाँ हर तरह के फूल खिले हैं।
2: कितना निमन लगे थे, हर जोतेत किसान, बुढ़ऊ बैठल दलान, आ बुढ़िया तापेत बोरसी, बहुरिया पाथित करसी, कितना निमन लगे थे।
3: तू कहे था ते न जो कहला न जाए, मन मोटाव हुए से, रूसा फुल्ली हो जाए से, आ बोला चाली न हुए से, कहीं भाई बहन के रिश्ता टूट जाइए।
1: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति बच्ची का कार्यक्रम अंगना, सुनना न भूले मंगलवार दिन के 11 बजे।
4: चाचा कहे अखिन चल तोहर माय बाबू के खोपसन सुनाबे हियो, त खोपसन के अर्थ होय है उलाहना।
1: अपने स्मार्टफोन पर सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप न्यूज ऑन AIR।
5: घर घर के रवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के रवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक कई क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। आप सुन रहे हैं आज की हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। इस समय सुबह के 9:50 हुए हैं, समय हो चला है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दिल की गहराइयों से आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सारा दिन बचा हुआ है भाई, आपके काम भी बचे हुए हैं। हमारी ये कोशिश है कि इन फिल्मी गीतों के माध्यम से हम आपके काम में थोड़े से सहयोगी हो सके, आपकी ऊर्जा बनी रहे और आप लगातार अपने काम और अपने जो भी लक्ष्य बना रखे ना, उन्हें पूरा करें। यही तो हमारा उद्देश्य होता है, अपने सुनने वालों के साथ बने रहना। तो आइए ना, इस कार्यक्रम का ये पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म अनीता से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। प्यार भरे फिल्मी गीतों के इस सुहाने सफर में आप हैं हमारे साथ। एक बार फिर इस कार्यक्रम में आपके साथ है आपका ये रेडियो हम सफर। इस कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने आपको सुनवाया, फिल्म थी अनीता, गायक कलाकार थी लता मंगेशकर। लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए फिल्म असली नकली का वो गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इस अंतराल से पहले हम आपको सुनवा रहे थे दोस्ती फिल्म का वो गाना जिसे गाया था मोहम्मद रफी ने। प्यार भरे फिल्मी गीतों के सुहाने सफर में आप है हमारे साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। अपने सुनने वालों को हम याद दिला दें, आज ही हमारी इस पहली सभा में दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे अपने पसंद के प्यार भरे फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम, जो आधारित होता है आपकी फरमाइशी चिट्ठियों पर। जी हाँ, कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे आज दोपहर 1:15 से। साथ ही साथ श्रोताओं आपको याद दिला दें अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों का जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, आज आप सुनेंगे रात 10 से 11 के बीच। सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। और आइए ना इस प्यार भरे फिल्मी गीतों के सुहाने सफर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी जीने के लिए पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिंदगी जीने के लिए जज्बात का होना जरूरी है, प्यार का होना जरूरी है, अपनापन का होना जरूरी है। कहते हैं कि अगर साथी हम सफर बेहतर हो तो सफर कैसी भी हो, सफर की मुश्किलें बड़ी आसानी से कट जाती है। तो ये जो हमारी जिंदगी है ना, इस जिंदगी में तो भाई सुख और दुख का आना जाना लगा ही रहेगा। हमें उस नदी की तरफ बहते जाना है, बहते जाना है, बहते जाना है।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: हर कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है।
3: इस अंतराल से पहले हम आपको सुनवा रहे थे धन दौलत फिल्म का वो गाना जिसे गाया था किशोर कुमार और आशा भोसले ने। फिल्म संगीत का हमारे ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ

0: सन
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: आज फिर जीने की तमन्ना है। जी हाँ, ये जो तमन्ना है ना, ये बनी रहनी चाहिए जिंदगी जीने की। मुश्किल कैसी भी आए, जिंदगी में रुकावटें कितनी भी हो, हमें आगे बढ़ते रहना है। कुछ ऐसी तो सीख दे जाते हैं कुछ प्यार भरे फिल्मी गाने हमें। कहते गाने वैसे जिनके शब्द शब्द नहीं सच्चाई बयां करे। गाइड फिल्म का वो गाना हम आपको सुनवा रहे थे, लता मंगेशकर का गाया हुआ। फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। लीजिए, इस कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ। फिल्म का नाम है मेरे हम सफर।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इस अंतराल से पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर का गाया वो प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म राजकुमार से। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम। मैं तुलसी तेरे आंगन की, लीजिए इस फिल्म में एक बार फिर लता मंगेशकर।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

ऐ फूलों की रानी, आरजू फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे थे मोहम्मद रफी का गाया हुआ। प्यार भरे फिल्मी गीतों के